0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
1: फिर
0: फुर,
1: फुर,
0: फुर, फुर, फुर।
1: बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
0: कह दो
1: कह दो
0: कह दो
1: कह दो

0: आई।
1: रघुकुल रीत चला चती चल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाना ना जाई,
2: जाई जाई
1: बन चले।

0: ये कुलम।
1: अरे अरे भालू आया
2: नहीं? आया
1: तो फिर सो जाओ।
3: क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोंद पर।

0: Laika Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocenter.org.
4: Sari Raat, Bollywood classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे

सो मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार। कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई।

0: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: डन।
1: कंग्रेचुलेशन देवदास। देखा मिस तारा जयसिंह, देखा
2: आप लोग देवदास, ये लोग जीनियस हैं। देखो इन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया।
0: लेकिन मैं तो खुद ही,
2: तुम्हें पता है इन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि शायद आज तुम यहाँ आओगे, और अगर आए तो जरूर अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, चलने लगोगे। मगर आप लोगों को ये कैसे पता चला डॉक्टर?
3: हम अपने मरीजों की साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं, हम जानते हैं कौन कैसे कब ठीक होगा।
4: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
5: What a classic game that is.
4: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
5: And if I can buy you 129 Indian rupees, make sure you transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
4: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
6: We hit like our gold.
4: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
5: Let's get back to the music, a classic. From the film Aapki Khatir.
8: Bangle mein gaadi ho. Gaadi mein mere sang.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब
3: World.com 0730099823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823 हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द फैमिली इन टाइम्स ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ ओम Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
4: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0.

0: सबसे निराला मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: सरप्लस अब है स्टॉक लॉस।
1: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Cool music for a super hot summer time on the Lyca Radio Network.

0: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
2: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
3: परंपरा भी
4: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-50-6015।
5: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
6: Gold Breakfast with Kajal on Like a Gold.

0: Angels Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट ट्रेवल world.com.
4: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956-278-228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.

0: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: sonatours.co.uk 13 days Vietnam and Cambodia departures every month September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com.
5: Gold Breakfast with Kajol.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Like a Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: 0730099823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
4: हरे कृष्णा. सेलिब्रेट कृष्णा जन्माष्टमी इन अ ट्रूली वाइब्रेंट वे. जॉइन अस ऑन Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड, वेस्ट लंदन और इल्फर्ड, ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344.
6: Dad, Dad, Dad!
7: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Mera boiler lekar aaya hai pre-booking sale ka shandar mauka. अब सभी Bosch बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की Bosch गारंटी. अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीएनसी सप्लाई.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
11: Rich, authentic taste every single time.
10: Royal Chai, brewed for business.
11: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better. This is Leica Gold.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
2: पल भर के लिए
3: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 पीएम एट हेरो आर्ट सेंटर टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 25 pounds बुक टिकट्स एट heroartcenter.com बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक a radio network.
4: Dreaming of paradise?
5: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
4: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
5: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
4: At all protected.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location.
6: High appreciation
7: in Dubai.
8: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
9: बीकानेर वाला परंपरा भी
10: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT कॉल करें 07487-687-885
11: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Like a Gold.
12: जरा और खिलखिला के

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका, स्वागत है मनोरंजन की दुनिया में, द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। बुधवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 19 तारीख और वक्त वल ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुआ चाहते हैं। और भर भाइयों, यही तो वक्त है जब हम आप मिलके चला करते हैं संगीत की सुहानी सफर पर। माय नेम इज रवि शर्मा और दोपहर बाद 1 तक मैं ये मनोरंजन कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो इजाजत है, खोलूं डायरी, बोलूं शायरी। देखिए साहब, आज बुधवार और बुधवार का दिन किस तरह की बातों का होता है आप जानते हैं। बार बार हम याद दिलाते हैं कि
1: ओ मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: आज मैं आईने से खफा हो गया, आज मैं आईने से खफा हो गया, मुझसे कहने लगा तू बूढ़ा हो गया। देखे मूछों को ताव, मैं बोला उसे यार कुछ तो शर्म कर, तुझे क्या हो गया। मानता हूं कि निकला ये थोड़ी तौंद और सर भी बालों से हल्का जरा हो गया, पर कितने बरसों से, मैं तो 21 का ही हूं, कौन कहता है कि मैं बड़ा हो गया। नौजवानों से बढ़कर जवां दिल हूं मैं, अच्छी सूरत दिखी मैं फिदा हो गया। उम्र तो वही एक नंबर है, लोग कहते हैं, देखते हैं।
2: Let's return for the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. London's biggest classics all day. Leica Gold.
0: पिछले कितने बरसों से मैं 21 का हूँ, कौन कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया या बड़ा हो गया।

0: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: कार्यक्रम की शुरुआत हमने दो गीतों से की, बैक टू बैक संगीत सुनवाकर अब आपको बताने जा रहे हैं हम SBI का रेट पाउंड के मुकाबले भारतीय रुपया कितने मिल रहे हैं भाई रुपए. लेट मी सी हियर एंड आई विल टेल यू. SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, भाई उनका कहना है कि अच्छा रेट चल रहा है. आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो हमारी सेवाओं का फ़ायदा उठाइए. आज का रेट है फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 129 pounds and 35 pence, 129.35 rupees एक पाउंड के बदले. यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
5: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
11: ये है लाइका गोल्ड.
12: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.

0: Mamster નું પાણી પૂરી અને પાણી પૂરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
5: हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जपील ही है.
6: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
7: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
9: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Mangal, Buddh, Veer, Shukr, Shani, Itwar. 7 days mein hansna chahiye kam se kam 700 baar.
3: सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार। भाई हंसने के बहाने ढूंढते रहते हैं और जहां मिल जाए बटोर लेते हैं, जमा कर लेते हैं आपके साथ साझा करने के लिए। अब देखिए एक लतीफा, लतीफा क्या साहब, घटना है घट गई, क्या कर सकते हैं। भिखारी मिला, एक मांग रहा था बड़ी करुण आवाज में,
4: ए साहब देगा कोई आस औलाद वाला अंधे फकीर के बच्चे को माँ।
3: मतलब अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था, अपने बच्चे जिसके कंधे पर हाथ रखा हुआ वो अंधा जल रहा था,
4: देगा कोई आस औलाद वाला इस फकीर के बच्चे को माँ। ए बाबू कुछ दीजिए ना, ए कोट पैंट वाले बाबू, ए टाई वाले बाबू, दे रहा कुछ, चलो 10 पेंस का सवाल है, सिर्फ 10 पेंस है बाबू, 10 पेंस।
3: अब भाई बाबू कहता है, अरे भाई 10 पेंस में आजकल क्या आता है, मांगो तो थोड़ा ज्यादा मांगो ना, 10 पेंस, 10 पेंस का क्या मांगना।
4: ए साहब हम भी औकात देख के मांगते हैं, समझे।
3: अब साहब वो एक गीत की फरमाइश की थी, भिखारी वाले गीत की, और वो गीत अब ज़रूर सुनाएंगे आपको। तो हमने कहा पहले भिखारी वाला वो लतीफ़ा सुना दें आपको, और उसके बाद जैसे ही गीत मिलेगा चला देंगे। हाँ मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और साहब वो गीत जो था जिसने मांगा था, मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर सुन रहे होंगे, और वो गीत ये था, नहीं भिखारी नहीं है भाई, प्रेमी है, क्योंकि भिखारी तो भीख मांगता है, ये तो प्रेम मांगता है, प्यार मांगता है भाई, दे दो। मुझसे कोई मांगता मैं तो दे देता,
4: अपनी औकात है।

0: दे दो भाई, प्यार तो बहुत है आपके पास, बहुत बांटते हो। आशा भोसले की आवाज में ये गीत हमने आपको सुनाया, फिल्म शराबी से लिया गया था। और अब घड़ी की तरफ देखिए, वक्त क्या हो गया है, 10:30 बज चुके हैं साहब, 10:31 हो गए हैं, यानी टाइम टू ब्रिंग यू द न्यूज। लेकिन भाई न्यूज में सबसे पहले तो आपको ये खबर दें कि क्रिकेट के बारे में, श्रीलंका के खिलाफ गेल क्रिकेट टेस्ट में भारत ने जीत हासिल कर ली है। सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे, जिसमें देवदत्त पेडिकल के 167 रन शामिल थे। श्रीलंका पहली पारी में 284 रन ही बना सका। मानव सुथर ने 4 विकेट लिए और दूसरी इनिंग में 6 विकेट लेकर के साहब उसने 10 विकेट चटकाए इस मैच में। हैरानी वे आपको बता दें भाई, अब 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 से आगे है भारत, श्रीलंका गई हुई है भारत की टीम। और स्कोर के आंकड़े हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रेड्स। बंगाल, वेस्ट बंगाल में कोलकाता के एक होटल में भीषण आग लगी है, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया से आई खबर में, डेविड वार्नर पर ड्रिंक ड्राइविंग मामले में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। डेविड वार्नर, जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी। झारखंड से खबर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने रद्द की 44 भर्ती परीक्षाएं। और ईरान के साथ यूएई ने रोका व्यापारिक लेन देन, बिजनेस नहीं करेंगे। विस्तार से खबरें, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिकी अफसर समझते हैं कि ईरान पर और अधिक दबाव डालकर उसे ऐसी रियायतें देने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं थी। गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों इस मामले को नहीं संभाल सकते। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को पहले उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए जो उसने खुद पैदा की हैं। भारत की राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोडक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया में प्रोसेस में कथित धांधलीबाजी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में हुई गिरफ्तारियों पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का एक वो तो अपने आप में एक फिल्म है, भ्रष्टाचार की किताब है, दिल्ली टू पंजाब। आज जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वे सिर्फ एक्टर हैं, और इस फिल्म के डायरेक्टर राइटर शीश महल वाले फॉर्मर MLA और CM अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल का दावा है कि अमित शाह के कहने पर हुई है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। भाई सत्येंद्र जैन भी उनकी सरकार में एक मंत्री थे और उन्हें अरेस्ट किया गया है, फिर से पहले भी वो अरेस्ट हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने पर हुई है। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कहते हैं कोई प्लान नहीं था, फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि अरेस्ट कर लो, तब किया। भाई कोई तो आरोप लगाया होगा, उसका खुलासा अभी नहीं हुआ, लेकिन पता करेंगे कि किस अपराध में उन्हें अरेस्ट किया गया है। हाँ लिखा है, जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के फॉर्मर CEO उदित प्रकाश और 6 लोगों को भी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट को लेकर के और उसके लिए जो टेंडर निकाले थे उस प्रोसेस को लेकर के धांधलीबाजी का मामला उनके खिलाफ है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर CJoseph विजय ने विधायकों को सरकारी गाड़ी और 1,00,000 रुपए का मासिक भत्ता देने का ऐलान किया है, सभी MLAs को। CM विजय ने यह ऐलान विधानसभा में नियम 110 के तहत किया। इंटरनेशनल खबरों में, ट्रंप ने कनाडा पर लगने वाले 50% टैरिफ को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। 50% टैरिफ को कितने दिनों के लिए? तीन दिनों के लिए टालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कनाडा पर लगने वाले 50% टैरिफ को 3 दिनों के लिए रोक दिया है। ये टैरिफ कल सुबह से लागू होने वाला था। इसे रोकने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को आखिरी रूप दिए जाने के बाद कनाडा और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है। अभिजीत दीप के ये नाम तो भाई अब जाना पहचाना हो गया होगा आपके लिए। पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं ये अभिजीत दीप के। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने के ऑफर पर रिएक्ट किया है। दीप के ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, अभी 1 महीने पहले तो मैं तुम्हारे लिए एंटी नेशनल था, अब मुझे पार्टी में शामिल करने के लिए इन्वाइट कर रहे हो, नहीं चलेगा। और साहब क्यों भाई हमारा ये आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इस मामले में कार्रवाई हो रही है। किस किस मामले में? एक तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित कैंपस पर छापेमारी हुई है। इनके खिलाफ भी धांधली के मामले दर्ज हैं। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के अलावा दिल्ली में करीब 10 कैंपस की तलाशी ली जा रही है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके के एक होटल में कल रात देर आग लग गई, जिसके कारण एक बच्चे समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस ने 2 ईरानी डिप्लोमेट्स को देश से निकालने का फैसला किया है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जी नोएल बेरोट ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले ईरान ने फ्रांसीसी एम्बेसी के 2 कर्मचारियों को वापस ईरान आने से रोक दिया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के फॉर्मर बल्लेबाज डेविड वार्नर पर ड्रिंक ड्राइविंग मामले में 1,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर करीब यानी 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कार में ऐसा इंटरलॉक डिवाइस लगवाने का आदेश दिया गया है जो उनके शरीर में शराब की मौजूदगी का पता चलने पर कार को स्टार्ट होने से रोक देगा। टेक्नोलॉजी। ईरान के साथ मिडल ईस्ट के एक देश ने व्यापारिक लेन देन रोक दिया है। किसने? यूनाइटेड अरब अमीरात ने ईरान के साथ सभी व्यापारिक और फाइनेंशियल लेन देन को अगले आदेश तक सस्पेंड करने का ऐलान किया है। यूएई के फॉरेन मिनिस्ट्री ने वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और शांति सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने के मद्देनजर यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में यानी मिडल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद यूएई उन देशों में शामिल रहा जिसे ईरान के हमलों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा था। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और अब संगीत की तरफ लौट आइए। और साहब आपके हमारे बीच दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत बनाइए।

0: Book now, visit starters.co.uk or call
1: 208-900-2323. After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीसीएस अप्लाई।
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
5: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk।
6: Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold।
7: और ये गीत हमें लेकर चलेगा खबरों तक। खबरों के उस पार हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी चिंतन में। A very good morning to you।

स्वागत है आपको मनोरंजन के कार्यक्रम में। भाई ये दूसरा दौर है, आपका स्वागत है। और इस दौर में हम आपका स्वागत चिंतन के साथ करते हैं। थॉट फॉर द डे, आज का विचार, आज के चिंतन के लिए आलेख हमें भारत से भिजवाया हमारे एक पुराने मित्र ने। ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि वो वहाँ सुनते हैं हमें, और ख़ासकर वो लोग जो खुद रेडियो से जुड़े रहे हैं देर तक। और भाई काफ़ी लोग उस नाम से परिचित हैं। नाम है उनका श्याम गुप्ता, कुरुक्षेत्र में रहते हैं। और भाई किसी ज़माने में आकाशवाणी रोहतक में वो हमारे सीनियर थे, और यूँ समझिए कि भाई हमारे मार्गदर्शक भी थे। अब वो रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। श्याम गुप्ता कहते हैं कि आज के दिन आप ये चिंतन प्रोग्राम में शामिल कीजिए। स्कूल कॉलेज आप भी गए होंगे, भाई भारत में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। आज मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं उनमें से एक व्यक्तित्व का जिक्र करना जरूरी है। आज जन्मदिन है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, 1992 से 1997 तक वो प्रेसिडेंट रहे, और इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे 1987 से 1992 के बीच। 19 अगस्त 1918 में उनका जन्म हुआ था भाई, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भाई वैसे आज जन्मदिन तो सुधा मूर्ति जी का भी है, नाम सुना होगा आपने। ये अगर और अच्छा परिचय दूं तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो उनके दामाद थे, ऋषि सुनक, इनकी मदर इन लॉ। उनका जन्मदिन है। और भाई वो सही बताऊं आपको, ऋषि सुनक से भी ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी राइटर भी हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, दान पुण्य बहुत करती हैं, परोपकार की उनकी कहानियाँ हैं। आज जन्मदिन और भी कई लोगों के हैं, लेकिन हम चिंतन जो हमें मिला है श्याम गुप्ता जी की ओर से वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। 19 अगस्त 1918 में भोपाल में जन्मे थे, मध्य प्रदेश में। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ और कैम्ब्रिज में एजुकेशन हासिल की थी, और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े विद्वान। लेकिन साहब उनके जीवन से जुड़ी एक घटना है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 अक्टूबर 1996 को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। भारत के राष्ट्रपति का स्वागत वहां कुछ अलग तरह से हुआ। वहां खुद वहां के सुल्तान काबूस हवाई अड्डे पर आए और प्लेन में चढ़कर के उनको वहां सीट से अपने साथ लेकर के आए, उनका स्वागत किया। और फिर जब गाड़ी हवाई जहाज के पास ही आकर खड़ी हो गई थी तो भाई उस गाड़ी के ड्राइवर को कहा कि तुम दूसरी कार में आओ, शर्मा जी के लिए गाड़ी मैं चला करके इन्हें महल तक लेके जाऊंगा। हवाई अड्डे पर ही खुद सुल्तान ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया प्रेसिडेंट के साथ, और फिर वहां के राष्ट्रपति भवन के अधिकारी का अभिलेख में भी यह घटना दर्ज है। अब इसका कारण केवल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं था। भाई प्रोटोकॉल तो फॉलो हो ही नहीं, क्योंकि सुल्तान कभी भी एयरपोर्ट पर किसी बड़े से बड़े नेता को भी रिसीव करने नहीं जाता था। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वो अध्यक्ष आते थे राज्यों के, लेकिन काबूस किसी को लेने नहीं गए। चर्चा हुई, पूछा गया भाई ऐसा प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा, आप खुद क्यों गए प्रेसिडेंट डॉक्टर शर्मा को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर, और फिर अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके उन्हें प्रेसिडेंट हाउस यानी अपने महल तक लेके गए। ये औपचारिक प्रोटोकॉल से हटकर ऐसा क्यों किया, जब प्रेस ने पूछा तो बड़े भावुक शब्दों में उन्होंने कहा, भाई ये सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है भारत के, ये मेरे गुरु हैं। और बहनों भाइयों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मस्कट के सुल्तान के टीचर रहे थे जब वो पुणे में पढ़ते थे। और साहब टीचर को हिंदुस्तान में
बहुत बड़ा रुतबा हासिल है, बहुत बड़ा सम्मान होता है उसके साथ। तो कहते हैं कि मैंने इनसे सिर्फ तालीम हासिल नहीं की, संस्कार भी लिए हैं, और वो इन्हीं संस्कारों के कारण मैं इन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक आया हूँ।

तो बहनों भाइयों, आज के चिंतन का संदेश डॉक्टर शर्मा और ओमान के सुल्तान का ये प्रसंग साबित करता है कि जो लोग गुरु का सम्मान करते हैं उनके पास ही ज्ञान ठहरता है, वरना पढ़ लिख कर भी लोग ज्ञान विहीन रह जाते हैं। गुरु को वो स्थान, वो पद, वो सम्मान भारत में मिलता है कि एक ऐसा शासक जो पहले कभी किसी को लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं गया, उन्हें वहां से अपनी गाड़ी में बिठा कर लाया, क्योंकि उन्होंने ऐसी एक भाई तालीम ली थी उनसे, ऐसी एजुकेशन जिसमें गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा का पाठ पढ़ाया जाता है। टीचर उस्ताद सम्मान का अधिकारी है।

ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद बच्चे थे जब उन्होंने एजुकेशन ली थी पुणे में जाकर के, और उनके टीचर थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति बने बाद में। लेकिन उस बच्चे को ये संस्कार दिए गए कि जो गुरु का सम्मान करता है, ज्ञान को इज्जत देता है, वो अपने राज्य के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, अपने सेवकों सैनिकों के प्रति, सबके प्रति बहुत बहुत उदार रहता है।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yona.
1: बताएंगे भाई मनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले चिंतन को अच्छी तरह से समेट लें। आज का चिंतन, आज का विचार कैसा लगा आपको?
2: चिंतन,
1: हमें प्रतिक्रिया, हमें रिएक्शन मिलता है स्क्रीन पर, आपके संदेश आते हैं। लेकिन भाई हम कहना चाहते हैं पहले तो धन्यवाद श्याम गुप्ता, हमारे सीनियर, हमारे एक तरह के टीचर भाई, हमारे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में एक उस्ताद की भूमिका निभा रहे थे। वो 1969 में रेडियो ज्वाइन किया तो उनके साथ संपर्क हुआ, आजकल कुरुक्षेत्र में है, और वहां से उनका भाई भेजा चिंतन हमने उस्ताद के बारे में, टीचर के बारे में प्रोग्राम में शामिल किया। आज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती, उनका जन्मदिन है, तो भाई उन्हें हम श्रद्धा से याद करते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। और भी बहुत से लोगों के जन्मदिन है भाई, आपके घर परिवार में आकर किसी का बर्थडे है तो हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार कर लीजिएगा। हैप्पी बर्थडे। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
2: चिंतन, चिंतन।
1: लीजिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं और आपको पाउंड का रेट बताते हैं।
0: SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK बता रहे हैं भारतीय करेंसी में पाउंड का कितना मूल्य है।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Well, State Bank of India UK today, they are giving 129.35 Indian rupees for £1. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. TNC apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
1: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए,
0: जहां जिंदगी वहां सेट गो माइक्रो।
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel, at all protected. One performer.
5: Countless personalities.
4: A whole universe of entertainment.
5: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
4: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा नरंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा, भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
8: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
7: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
8: Friends, family, ya special नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
9: पैक्ड फॉर द ट्रिप? गिफ्ट्स, पासपोर्ट?
10: चेक, जस्ट ड्रेडिंग दैट फोन बिल व्हेन आई गेट बैक फ्रॉम इंडिया। रोमिंग इज अ नाइटमेयर।
9: मेट, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। जस्ट गेट सिमजी।
10: सिमजी?
9: इट्स एन ईसिम ऐप। यू बाय अ डेटा प्लान फॉर इंडिया स्टार्टिंग एट जस्ट $5। नो स्वैपिंग प्लास्टिक सिम्स, नो कियोस्क्स।
11: प्लान्स फॉर एशिया, यूरोप एंड beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.

जो लोग इस तरह सोचते हैं भाई, वो कभी भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, कभी भी अपना निष्ठा से काम नहीं करते हैं। अपने बाप का क्या जाता है, होने दो, चलने दो, खपने दो, अपने बाप का क्या जाता है।

0: गोल्ड।
1: ओम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
2: हंसना तो चाहिए, जरूर हंसना चाहिए कम से कम 700 बार, लेकिन साहब किसी भी मामले में पुलिस के पास नहीं फंसना चाहिए। सही बात, एक बार लीडर बनने के चक्कर में भाई मैंने भी पुलिस के डंडे खाए थे, और भाग भाग करके ना बाद में पुलिस वाला कहता है, मैं डंडे बरसाने शुरू किए कई लड़कों को पड़े भाई, हम यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक कर रहे थे, और बाद में वही पुलिस वाला जब कहता, अरे आप तो शर्मा जी थे यार, आप तो स्टेज पे बहुत हंसाते हैं यार, सॉरी यार गलती से मैंने वो डंडा आप पर भी चला दिया। लेकिन साहब हमारे कुछ श्रोता जो हैं वो आज के दिन के लिए लतीफे भिजवाते हैं, और ये हिना ने भेजा है। जज कहता ऑर्डर ऑर्डर। क्यों भैया तुम्हें शर्म नहीं आती? इस महीने में तुम चौथी बार अदालत में आए हो, चौथी बार जुर्म करके अदालत में पेश किए गए, शर्म नहीं आती क्या? कहता सर मैं तो चौथी बार आया हूं, आप तो हर रोज आते हैं इस अदालत में, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए।
3: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: ये बार बार चोरी क्यों करते हो? जज पूछता है। पकड़े जाते हो, सजा पाते, फिर चोरी करते हो। नहीं साहब चोरी करना तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। हाँ तुमने वादा किया था कि तुम चोरी छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया सब, बस थोड़ा बहुत झूठ बोल लेता हूँ जैसे अभी बोल रहा हूँ।

0: चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, बहुत है कुछ लोग ऐसे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: Like a extra podcast update.
0: और भाई अपडेट करके बता दें आपको कि इस समय जो हमारा पॉडकास्ट बहुत देखा जा रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, वो है पॉडकास्ट एपिसोड 29। लाइक एक्स्ट्रा पर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये है भाई, इसका टाइटल है इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और भाई अब ये आप एपिसोड देख लेंगे तो लगेगा कि सचमुच कितनी मूल्यवान है ये धातु, ये मेटल, क्योंकि ये पीले रंग का मेटल जो है इसकी ना तो कदर घटती है, ना इसका मूल्य घटता है, ना इसकी इम्पोर्टेंस घटती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं तो वो एक जगह जहां ले ली वहीं है, लेकिन इसको आप लेके इधर उधर घूम सकते हैं, इसको यहां वहां कहां इन्वेस्ट करना है, जब चाहे इन्वेस्ट करना है, कहीं और खर्च करना है, इसको भुनाना है, और इसकी वैल्यू बढ़ती ही है। और मैं इस एपिसोड में बात कर रहा हूँ जाने माने ज्वेलर्स के, वो भाई प्रेसिडेंट भी रहे हैं यूनियन के, और ही इज़ डायरेक्टर ऑफ मीनार ज्वेलर्स। तो आप ज़रूर देखिएगा, ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं उन्होंने मेरे सवालों के, और इतनी गहन जानकारी है उनके पास गोल्ड के मामले में, गोल्ड प्राइसेस के मामले में। तो आप ज़रूर देखें इस गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, होस्टेड बाई मी रवि शर्मा।
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Let's stop there. Being a soldier, it's exciting. You already know that. What you want to know is, what's in it for me? I wanted to learn leadership skills from the experts.
5: I wanted to get paid to earn qualifications.
6: I wanted more confidence. And now look, I'm on the radio.
7: That's what was in it for me.
4: Get skills, get qualified, get confident. Army. Recruiting now. Search Army Jobs.
3: Leica Gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
8: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
9: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: विजिट travelhubworld.com।
10: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
11: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
10: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough, on Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
13: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
9: Dad.
14: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
14: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
14: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
15: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
16: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344, a 24-hour line.
17: Hare Krishna. Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB31AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
18: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
19: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
20: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और community spaces.
19: Rich, authentic taste every single time.
20: Royal Chai, brewed for business.
19: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
10: Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.
0: Very good morning. Aap sun rahe hain Leica Radio Network par Leica Gold.

0: नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई, यकीन मानो कम से कम अगले सवा घंटे तक तो कहीं नहीं जाएंगे। फिर तेजेंद्र शर्मा याद दिला रहे हैं कि आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई, ये बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, राइटर हुए हैं हिंदी साहित्य के, तो कहते हैं उनकी भी जयंती है, उनका भी जन्म आज ही हुआ था। और भाई मान्यता ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उनका भी जन्म आज के दिन हुआ था। ये तारीख जो है ना, मतलब देसी तिथि के हिसाब से आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। और हमारी वत्सला जी कह रही हैं कि तुलसीदास जी की जयंती की सभी को बधाई। चलो चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर, क्या बात है भाई। तुलसी जी की चौपाइयों को लेकर ही एक चिंतन बन सकता है, एक चौपाई से एक चिंतन तो कभी शामिल करेंगे। लेकिन आज गोस्वामी जी की जयंती पर सबको भाई मानस प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और मानस पर बड़ी अच्छी कथा करती हैं आजकल, तो श्रावण मास के कारण शिव भगवान पर कथा चल रही है हमारे बापूजी की, चिन्मयानंद बापू जो है फैमिली में कर रहे हैं कथा, तो वह बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। और भाई अच्छे जीवन के लिए, जीवन में अच्छे आचरण के लिए संतों का और ग्रंथों का बहुत बड़ा योगदान होता है, उनसे लाभ उठाइएगा।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल, एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: इटालियो भाई, ये LemFi वाले जो है वो कितने पैसे दे रहे हैं एक पाउंड के बदले, तो आई टेल यू।
2: And money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
0: LemFi वाले दे रहे हैं एक पाउंड के बदले विभिन्न करेंसी में, भारतीय करेंसी में 129.85 और साहब पाकिस्तानी करेंसी में 376.45, श्रीलंकन रुपए 449.63, बांग्लादेशी टके 165.6 और अफगान अफगानी 89.46।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 103.66 pounds per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
2: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
2: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
2: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
2: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
3: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: नोक झोंक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
8: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
11: बीकानेर वाला परंपरा भी,
12: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA, कॉल 07555-506015।
13: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स, फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन।
14: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
15: वेरी गुड मॉर्निंग भाई, ये गीत हमें खबरों तक ले जाएगा, लेकिन इसी बीच हमें प्रतिभा का संदेश मिला है कि मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव है आज जैन संप्रदाय के लोगों के लिए, क्योंकि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान उनकी जयंती मना रहे हैं। वो कहते हैं श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन बने अयोगी हे भगवान, अंतिम शुक्ल ध्यान धर संविदाचल से पाया पद निर्वाण, कूट स्वर्ण भद्र पर इंद्रादिक ने किया मोक्ष कल्याण, जय जय पार्श्व जिनेन्द्रेश्वर प्रभु परमेश्वर, जय जय दया निधान। भाई अच्छी कविता आपने लिख करके भेजी है प्रतिभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते हैं कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस भी है, उसके बाद भाई मोक्ष कल्याणक दिवस यानी आज के दिन उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था, मुक्ति जन्म मरण के चक्कर से। और भाई एक और डेडिकेशन, इसमें शादी के गीत की फरमाइश की गई है, और किसने की है, रिकेश और अक्षय। कहते हैं हम दोनों भाई अपनी बहन के विवाह पर एक गीत चाहते हैं आपसे। भाई बहन का नाम क्या है, नितिका, और उनके पतिदेव का अवराज। शादी के बंधन में बंधे हैं, तो भाई आपको दोनों भाइयों की तरफ से आपकी बहन को ये गीत जा रहा है और ये गीत हमें लेकर चलेगा खबरों तक। भाई बहन का भाई वो राखी वाला त्योहार भी आ रहा है, लेकिन आपकी बहन डोली में बैठी है, शादी के बंधन में बंधी है। दोनों भाइयों की ओर से उनके लिए गीत।

0: बैक टू बैक संगीत के तहत भाई दो गीत हमने सुनवा दिए आपको। लाइका रेडियो नेटवर्क का ये लाइका गोल्ड रेडियो है और लाइका रेडियो मिडलैंड्स। माय नेम इज रवि शर्मा और दोपहर बाद 1 बजे तक मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहनों भाइयों, दो गीत सुनवाने के बाद हम आपको बताते हैं पाउंड का रेट SBI की ओर से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI यानी State Bank of India UK. Today telling their rates. अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो भाई उनकी इस क्या कहते हैं सेवा का फायदा उठाइए। Today's rate is 129.35 rupees for £1. 129.35 मिल रहे हैं एक पाउंड के बदले। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू भाई. साहिर लुधियानवी साहब की रचना हमने आपको सुनवाई. ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस सप्ताह.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई गर्मियों से बचने के लिए बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे संत महात्मा, बहुत सारे राजनेता भाई वो ब्रिटेन का रुख करते हैं और जब यहाँ आते हैं भली इस साल तो ज़रूर उन्होंने सोचा होगा इतना पहले लाए इन्हें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, आज जरा जितना था मौसम होते सीखा उतना था इतने भी रह के बैठे नहीं गोरे जैसा वहाँ था वैसा ही मौसम यहाँ आया, क्या फ़ायदा हुआ? नहीं भाई, ये इसी बार ऐसा हुआ कुछ ज़्यादा गर्मी हो गई, वरना इन गर्मियों में तो यहाँ आकर के बहुत सुकून मिलता है। अब साहब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिनमें हम स्वागत करना चाहते हैं आने वालों का। एक तो उदित नारायण और आदित्य नारायण आ रहे हैं, वैसे तो आदित्य पहले भी आए थे और मेरा ख्याल उन्होंने गाया भी था जो बच्चे थे छोटे से, 2004 की बात है साहब, लंबी दूरी है। लेकिन उस समय उदित जी, उनकी पत्नी, उनका बेटा एक शो में इन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा था। और साहब अब आ रहे हैं वो परफॉर्म करने के लिए, पिता पुत्र सन आदित्य नारायण और पिता उदित नारायण, ओबो अरीना में, वैमली में। 20 दिसंबर संडे का दिन होगा, टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स लाइका रेडियो नेटवर्क। और भाई आ रहे हैं हमारे प्यारे सब के, क्या था वो डॉक्टर साहब, क्या नाम उनका, डॉक्टर समथिंग समथिंग गुलाटी जी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी भाई, वो डॉक्टर

0: डॉक्टर भी नहीं मशहूर नहीं है, गुलाटी भी मशहूर नहीं है, लेकिन डॉक्टर वो मशहूर गुलाटी जो है वो सुनील ग्रोवर बहुत मशहूर हैं भाई कॉमेडी की दुनिया में। कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29 अक्टूबर एंड लेस्टर एट मेटोरिये अरीना ऑन सैटरडे 31 ऑफ अक्टूबर। टिकट सेट ई एक्सेस इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर एक्सक्लूसिवली रेडियो पार्टनर्स लाइक का रेडियो नेटवर्क। तो साहब इंतजार रहेगा इन शोज का, इन कलाकारों का। ये सूचना देते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, दाग फिल्म का गीत आपने सुना, पसंद आया। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शन स्क्रीन पर चिपके हैं। सौ में रानी जी, भूषी में जगदीश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने दिखाया है कि ए ट्रू स्टोरी अबाउट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एंड सुल्तान ऑफ ओमान। चिंतन सुनकर बहुत अच्छा लगा। मिसेज पाकी चियांग, थैंक यू वेरी मच। हंसा बोरा अर्जन जी।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel का संदेश सुन लीजिए भाई। दुबई की यात्रा करना चाहते हैं तो वो कहते हैं अब सही समय है, हमारे पास बहुत अच्छी डील्स हैं, उनका फायदा उठाइए, तशरीफ लाइए और बुक कराइए, बुकिंग कराइए। Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel on 0208574 8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Ye hai Like a Gold. Like a
0: Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल travelhub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: travelhub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com. Gajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Gajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Gajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Gajal's Couture.
5: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए, हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on diwalistory.com.

0: कॉर्नस्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
1: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद
2: भी। बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो, TW3 1QT। कॉल करे 07487-687-885।

0: वाला सॉन्ग रफी साहब की आवाज में साजन की सहेली फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और उनका रेट मैं बता देता हूँ भाई, स्विफ्टली समय दे रहे हैं एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी 129.71 रुपीस, पाकिस्तानी 376.04 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 448.47, बांग्लादेशी टका 165.58 और अफगानी 89.39।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is being sold at the rate of 103.77 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
2: साफो ट्रेवल Auto protected.
3: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
4: Govind bolo Hari Gopal.
5: Krishna Janmano Anand Utsav. Ekaj Raat Ekaj Anubhav.
6: Nand ghar Anand bhayo jay kare.
3: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardomedialtd.com.
5: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
8: लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउन houses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Start to

ये आवाज जब भजन गाती है तो पूरा वातावरण जो है वो सुचित और पवित्र हो जाता है, मंदिर का रूप ले लेता है, घर तीर्थ बन जाता है वो स्थान जहाँ ये गाते हैं। और इस समय तो है ही तीर्थ पर, वो बहुत भाई जोरदार स्वागत कहते हैं हम परम पूज्य पद्मश्री से अनूप जलोटा जी को। अनूप जलोटा भाई एक ऐसा नाम जो संगीत से बहुत देर से जुड़ा है और बहुत क्या कहते हैं कि प्रतिष्ठित नाम है। अनूप जी नमस्कार। हेलो अनूप जी, आप हैं, चले तो नहीं गए? हेलो भाई, अभी बात हो रही थी उनसे, मैं एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। अनूप जलोटा हमारे साथ हैं।

0: लीजिए साहब, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अनूप जी हमारे साथ हैं, और कहां से साथ हैं भाई, कभी कभी गंगा स्वयं चल करके आती है पवित्र बनाने, और ये उसी तीर्थ पर है, गंगा के किनारे पर वाराणसी में। स्वागत है आपका सर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि।
0: हम तो वहां पहुंचेंगे जी 30 तारीख को, जहां आपकी आवाज और आपका दर्शन भी होगा, तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। बस थोड़ा सा ऐसे, एक तो कैसी तबीयत, कैसी चल रही है, स्वास्थ्य कैसा है?
1: तबीयत बिल्कुल अच्छी है, और अभी वाराणसी में हूँ। अब यहाँ से कल बम्बई, फिर 2-3 बीच में और प्रोग्राम्स हैं, वो सब करके लंदन आता हूँ।
0: हाँ, इंतजार कर रहे हैं लोग सर, आपकी आवाज का जादू जो है वो बेचैन कर रहा है सबको कि आप आने वाले हैं। तो 30 तारीख को है ना जी?
1: बिल्कुल,
0: संडे है,
1: संडे है,
0: और अनुज चोपड़ा फाउंडेशन के बैनर तले आपका शानदार प्रोग्राम जो है वो तैयारियां हो चुकी हैं, इंतजार कर रहे हैं लोग सुनने के लिए आपको। क्या क्या लेके आ रहे हैं?
1: मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ वो गजलें सुनाई जाएं जो अब लोगों को नहीं सुनने को मिलती हैं। देखिए, जैसे मेहंदी साहब ने कुछ गजलें गा दी, रंजिशी सही दिल्ली दुखाने के लिए, हाँ, अब हमारी गजल है चांद अंगड़ाइयां ले रहा है,
0: ये बज रही है सर नीचे इस समय, हाँ, आवाज अंगड़ाइयां ले रही है, लोगों के दिल अंगड़ाइयां ले रहे हैं सुर के।
1: ये सारी चीजें जो है, अब जरा मजा लिया जाएगा इस बार, बीच में वो भी सुना देंगे।
0: हाँ,
1: बहारों फूल

0: ये भी तो हो जाए।
1: हाँ बहुत बढ़िया, मतलब ये है कि बीच में फिल्मी गाने भी समा जाएंगे, गजलें तो होंगी होंगी, और मुझे यकीन है एक आध भजन भी आप जरूर सुनाएंगे श्रावण मास।
0: वो तो गाने ही पड़ेगा, लोग मानेंगे कहाँ बिना भजन के तो मेरा प्रोग्राम।
1: देखिए
0: वो तो
1: सर,
0: क्या है कि मेरा कोई कॉन्सर्ट हो ना, और एक एक ऑर्गेनाइजर ने बाद में मुझे कहा जी आपको पेमेंट नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, कहते कि आपने ऐसी लागी लगे तो गाए नहीं।
1: देखिए साहब ऐसा
0: तो
1: है,
0: गाने
1: गजल भी हो, फिल्मी गाने भी हो, कवालियां भी हो, लेकिन भजन के बगैर, भजन और भोजन बहुत जरूरी है।
0: अरे बड़ा जरूरी, बड़ा जरूरी है।
1: थैंक यू। तो यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं जरा एक बार वो उसके लिए टिकट के लिए बता दूं लोगों को कि भाई आप अपनी टिकट का इंतजाम कर लें। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 01708443333, बड़ा इजी नंबर 01708443333। तो अनूप जी थिएटर बहुत बढ़िया है, वो मैं गया हूँ वहाँ पे, और फिर आपके मैं तो नज़दीक से नज़दीक बैठना चाहूँगा सुनने के लिए, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। जन जी
0: बिल्कुल आपको आना ही है, एक शेर आपके लिए है।
1: प्लीज़ इरशाद, स्वागत।
0: तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं।
1: वाह।
0: तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे, कोई था ही नहीं।
1: साहब क्या बताएं, बस आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आपका मिलना, आपका मिलना और हमसे मिलना, आप किसको नसीब होते हैं सर।
0: होते हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
1: अनूप जी आपने एक लतीफा सुनाया था स्टेज पे है, और फिर आपने आपने फिर साथ में ये भी कह दिया कि देख लेना रवि अपने प्रोग्राम में इसको शामिल करेंगे। ये वहां सुनाया जाएगा सर, डेफिनेटली। मैंने वो कई बार तो स्टूडियो में सुनाया, पर वो मैंने प्रधानमंत्री का मैं प्रोग्राम कंपेयर कर रहा था वेम्बली स्टेडियम में, वहां भी वो खूब जमा। आपके पास ऐसी सामग्री है, आप लतीफे सुनाए तो, गजल सुनाए तो, शेर सुनाए तो, जो भी आप सुनाएंगे सर धमाल करेंगे, कमाल करेंगे।
0: एक
1: जी
0: एक आदमी मिला मुझे प्रोग्राम में,
1: हाँ जी
0: लास्ट शो में, कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ अनूप जी, आपको बहुत सुनता हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता मेरा नाम है मिर्ची कृष्णा।
1: हाँ
0: मिर्ची कृष्णा।
1: अच्छा,
0: मैंने कहा क्या फिर से बताओ यार। कहता हाँ। मिर्ची कृष्णा। मैंने कहा कुछ अजीब सा लग रहा है, तो कहता क्यों, अगर हल्दीराम हो सकता है तो इसमें क्या बुराई
1: है। बिल्कुल हो सकता है जी। सर ये बीच बीच में लतीफे, गजलें, शेर, अशार, मतलब और भजन, वहां जैसे ही आप भजन गाना शुरू करेंगे पूरा हॉल मंदिर बन जाएगा, सात्विक हो जाएगा।
0: और
1: गजल वहां गाओगे तो महफिल बन जाएगी, वहां
0: जबरदस्त महफिल बनाएंगे।
1: तो सर मैं एक बार फिर से बता दूं लोगों को कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहनों भाइयों, क्वींस थिएटर रॉमफोर्ड में, ये क्वींस थिएटर बिलेट लेन है, हॉर्न चर्च में, RM11 1QT, ये उसका पोस्ट कोड है। शाम 5 बजे दरवाजे खुल जाएंगे थिएटर के, 6 बजे कार्यक्रम डॉट शुरू हो जाएगा। अनूप जी समय की पाबंदी के लिए जाने जाते हैं, तो बहनों भाइयों पहुंच जाइएगा, 30 तारीख को संडे का दिन है, और अनुज चोपड़ा फाउंडेशन के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, यानी आप जो टिकट्स खरीदेंगे तो और अनूप जी भी पुण्य कमाएंगे और आप भी पुण्य कमाएंगे, क्योंकि ये चैरिटी शो है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही। अनूप जी कुछ और कहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहता हूँ कि लंदन इज़ लाइक सेकेंड होम, जब आते हैं मज़ा आ जाता है, कितने ही चेहरे वही नजर आते हैं जो हर प्रोग्राम में आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यही फील होता है कि एक अपने हिंदुस्तान से निकले और दूसरे हिंदुस्तान में पहुंच गए,
1: क्या बात,
0: तो महसूस।
1: क्या बात अनूप जी, एक बात और भी है ना कि जैसे कलाकार एक थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, वो आप नहीं करते, आप इतना घुल मिल जाते हैं जैसे अपने परिवार में बैठ के गए।
0: मुझे वही पसंद है।
1: हाँ जी वही पसंद है,
0: लगे कि फैमिली शो रहा।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम पलके बिछाए बैठे हैं अनूप जी की राहों में, देखना है ये असर कितना है आहों में, अपनी तो यूं ही गुजरेगी अनूप जी तब तक जब तक आपकी तस्वीर उभरेगी निगाहों में।
0: वाह वाह,
1: वेट करेंगे,
0: मुलाकात होगी,
1: मिलते हैं। सो नाइस ऑफ यू, वाराणसी की धरती को हमारा प्रणाम कह देना सर जी।
0: जरूर जरूर
1: इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बाय। इस समय अनूप जलोटा भाई वाराणसी में हैं, वहाँ कार्यक्रम, वहाँ से फिर मुंबई जाएंगे। इनके तो कार्यक्रम आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगातार जो है वो फिक्स रहते हैं। हमारे यहाँ आएंगे 30 तारीख को, शो है इनका, भूलिएगा नहीं, और उस दिन जम के इनकी आवाज़ का लुत्फ उठाएंगे। और लेकिन अब शर्मा जी जाएंगे, बाली भाई आएंगे, उनका इंतज़ार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। हैव ए सुपर्ब डे एंड बाय बाय फ्रॉम मी नाउ।

0: पे हम।
1: ओह वाओ, ऐसे गाने जब सुनते हैं तो लगे कि इतना जल्दी क्यों पूरा हो गया। अभी मैंने दो गाने जो सुनाए, जब भी खयाम साहब का नाम आता है सो इमीडिएटली लोगों की सोच ये होती है कि अभी बाली त्रिशूल के गाने सुनाएंगे, या तो नूरी फिल्म के गाने सुनाएंगे, या तो कभी कभी फिल्म के गाने सुनाएंगे, क्योंकि इनका नाम उमराव जान, कभी कभी, त्रिशूल, थोड़ी सी बेवफाई, नूरी, ये सब फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको कुछ अलग ही गाने सुना रहा हूँ, क्योंकि अर्लियर व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड म्यूजिक एट दैट पर्टिकुलर टाइम द अर्लियर सॉन्ग्स वर द वंस आई प्रेजेंटेड टू यू। मोहब्बत इसको कहते हैं, एक खूबसूरत फिल्म जो थी उसका म्यूज़िक उन्होंने दिया था, और रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी को गवाया था, खयाम साहब ने, मजरू सुल्तानपुरी ने लिरिक्स लिखी थी। एंड देन ये फिल्म जो थी फिर सुबह होगी, 1958 की फिल्म, उसमें खयाम साहब ने ये गीत मुकेश जी से गवाया था। सो वो दो गानों से मैंने शुरुआत की है। आगे जाते हुए आप तलत जी को भी सुनेंगे, जगजीत कौर जी ऑफ कोर्स इनकी वाइफ को सुनेंगे, भूपिंदर सिंह को सुनेंगे, ऐसे गाने मैंने चुने हैं। सो जिन लोगों ने ट्यूनिंग नहीं किया वो लोग पछताएंगे, और जिन लोगों ने अभी ट्यूनिंग कर लिया है, जैसे कि अर्जन जी है, बड़ी देर बाद नज़र आए हैं लेकिन आए हैं आज, नाजिया शकील, दिनेश पोपट जी, संध्या भावसर, मीना लखानी जी, रमा पटेल जी, सुनीता शर्मा जी, मिक्की पाजी, भरत गंगाराम जी एज ऑलवेज, एंड पैमी सिंह जी, ये सब हमारे ट्यूनिंग में होते हैं। अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल भी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे आर देयर, and it's so wonderful to see all the messages trickling in, wishing me and welcoming me, thank you very much. To in logon ne jo tuning kiya hai unko bada maza aayega is hour mein. Ab aap inke bare mein main aapko bataun, to bachpan se hi he was inclined to music since a very young age, and he was fascinated by the music of Indian cinema. इंडियन सिनेमा में इतना इंटरेस्ट लेते थे, हमेशा बस जहाँ भी मौका मिला वहाँ जाके गाने सुनने, सिनेमा में घुस जाने का। इनके अंकल को पता चला दिल्ली में, ही रियलाइज दिस एंड ही लेट हिम लर्न म्यूजिक, बोले इतना शौक है तो सीखो। उन्होंने पंडित अमरनाथ जी से मुलाकात कराई और उनसे खयाम साहब ने ट्रेनिंग ली। तब नाम खयाम तो था नहीं, मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, मोहम्मद जहूर हाशमी, अभी बॉर्न एज सआदत हुसैन। अभी मोहम्मद जहूर को म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट था तो पंडित अमरनाथ जी ने उनको ट्रेन किया और सिखाया। फिर वो लाहौर चले गए, सोचा मैं फिल्मों में काम करूँगा, and he went to meet the famous Punjabi music director Baba Chishti, and wo bade impress hue, bole ki badi dhagash hai is in ladke mein, Mohammad Zahoor. To inhone unko offer kiya a job as his assistant. Khayam ji ne wahan pe 6 mahine, Khayam to nahi lekin Mohammad Zahoor ne वहाँ 6 महीने उनके साथ काम किया एज असिस्टेंट, एंड देन ही वेंट टू लुधियाना इन 1943। अब 1943 में गए तो उम्र क्या थी, 16 साल। ये 16 साल का लड़का इतना म्यूज़िक में इंटरेस्ट ले रहा है, पंडित अमरनाथ जी से सीख भी लिया और जाके बाबा चिश्ती जी से मिलकर 6 महीना असिस्टेंट का काम भी किया, अब नॉलेज बढ़ गया था। एंड देन ही वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड एंड ही जॉइन द आर्मी, ही जॉइन द आर्मी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देन ही वेंट टू बॉम्बे टू फुलफिल हिज ड्रीम, बम्बई नगरी जो सबके सपने साह का आकृति है। ही मेड हिज डेब्यू एज शर्मा जी ऑफ द कंपोजर ड्यूओ। उन्होंने मुलाकात की एक रहमान साहब से, तो रहमान और जहूर दोनों ने मिलकर एक ड्यूओ बनाया एंड दे कॉल देमसेल्फ शर्मा जी वर्मा जी। शर्मा जी वर्मा जी ने म्यूज़िक शुरू कर दिया तो इनकी मुलाकात हुई थी हुसनलाल भगतराम से। हुवर हुसनलाल भगतराम, पता है पंडित अमरनाथ जिन्होंने ट्रेन किया था उनको, गाना सिखाया था क्लासिकल संगीत, तो उनके भाई हुसनलाल और भगतराम उन्होंने बॉम्बे में इनको हेल्प की और इनको एक फिल्म दिलाई। द फिल्म वॉज हीर रांझा। शर्मा जी वर्मा जी ने हीर रांझा फिल्म में 1948, अब उम्र क्या थी 21 साल की, देखो 5 साल के अंदर कितना प्रोग्रेस किया इन्होंने। अब रहमान वर्मा जो द सेकंड पार्ट ऑफ शर्मा जी वर्मा जी, ही वेंट अवे टू पाकिस्तान टू सेटल आफ्टर द पार्टीशन, सो खयाम वेंट सोलो बट एज शर्मा जी। अभी इन्होंने फिल्म की बीवी एंड देन रफी साहब को गवाया, बट व्हेन ही कंपोज्ड फॉर राज कपूर, माला सिन्हा और राज कपूर वाली फिल्म थी फिर सुबह होगी 1958 में, उसमें लिरिसिस्ट थे साहिर लुधियानवी, ही गॉट ग्रेटर रिकग्निशन एंड द सॉन्ग्स वर वो सुबह कभी तो आएगी जो आप सुन रहे थे। अब उन्होंने नाम अपना चेंज कर दिया टू खयाम, कौन सी फिल्म से, दैट वॉज फुटपाथ। फुटपाथ फिल्म का गाना आप सुनाऊं या सुना दिया? नेक्स्ट गाना जो आएगा फुटपाथ फिल्म 1953 की, वहाँ से इन्होंने अपना नाम खयाम रख दिया। एक्चुअली खयाम दीनवी रखा था लेकिन उन्होंने फिर सिर्फ खयाम कर दिया अपना नाम। आगे जाते हुए मैं और भी बातें करूँगा लेकिन अब तक जितना सुना उतना काफ़ी है। आप आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कैसे उन्होंने शादी की एंड दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंटर कम्यूनल मैरिजेज इन बॉलीवुड, जगजीत कौर जी के साथ शादी की और उन्होंने फिर अपनी पूरी जायदाद कैसे ट्रस्ट में डाल दी, वो बातें हम आगे करेंगे। लेकिन अब गाने सुनते हैं, आज याद कर रहे हैं हम खयाम साहब को और दो ट्रिब्यूट्स है खयाम साहब और जान निसार अख्तर। जान निसार अख्तर अपने जावेद अख्तर के पिताजी। अभी जान निसार अख्तर का जन्म हुआ 18 फरवरी और खयाम साहब का जन्म हुआ 18 फरवरी और जान निसार अख्तर जी चल गबसे इस दुनिया से 19 अगस्त को, 19 अगस्त, और खयाम साहब वो भी चल बसे 19 अगस्त को, लेकिन इनके साल अलग थे। खयाम साहब 18 फरवरी 1927, जान निसार अख्तर 18 फरवरी 1914 एंड खयाम साहब ही पास्ड अवे ऑन 19 अगस्त 2019 एंड जान निसार अख्तर 19 अगस्त 1976। कितना इत्तेफाक है, ये दोनों एक ही दिन जन्मे थे और एक ही दिन चल बसे। अभी आगे जाते हुए पहला आवर इज द ट्रिब्यूट टू खयाम साहब, सेकेंड आवर विद जान निसार अख्तर और इन्होंने साथ में कौन सी फिल्में की थी वो भी हम आपको सुनाएंगे।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to 129.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंडन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 0794092467. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
0: Creatives, Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
5: Two businesses.
6: Same town.
5: Same service.
6: One appears on page one of Google.
5: The other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344।
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
12: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 0208150205 और विजिट meraboiler.com। टीजीसी सप्लाई।
13: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
14: बीकानेर वाला परंपरा भी।
15: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779-581-001।
16: Like a Goal, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
17: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: There you go. जैसे मैंने वादा किया था, फुटपाथ फिल्म से उन्होंने अपना नाम खयाम रखा। मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अच्छा, कुछ बातें इंटरेस्टिंग होती है, जैसे कि खयाम जी का मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, तो नॉर्मली पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि कभी कभी और त्रिशूल और इनकी जो नॉर्मल फिल्म उमराव जान, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, दिले नादां, रजिया सुल्तान, इन सब के गाने मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ अलग ही गाने चुने। कुछ बातें अनकही होती है या अनसुनी होती है, जैसे कि आपको मालूम था कि खयाम साहब ने एक ड्यूएट गाया था जोहरा बाई अंबाले वाली के लिए, उनके साथ, के लिए नहीं, उनके साथ एक ड्यूएट गाया था जोहरा बाई अंबाला वाली के साथ, एंड द फिल्म वॉज रोमियो एंड जूलियट 1947 की। तो अगर मुझे वो गाना मिलेगा तो मैं कभी ना कभी आपको सुना दूंगा, या तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे सैंडी पाजी को। सैंडी इज़ द एक्सपर्ट ऑन दीज वंडरफुल गोल्डन ओल्डीज। एंड वी गॉट दूसरी फिल्म इन्होंने जो की थी, हीर रांझा एज शर्मा जी वर्मा जी, शर्मा जी वर्मा जी एज अ ड्यूओ, एंड देन ही अडॉप्टेड द स्क्रीन नेम ऑफ खयाम फ्रॉम फिल्म फुटपाथ। सो कीप लिसनिंग टू द ट्रिब्यूट ऑफ खयाम साहब टुडे, 7th डेथ एनिवर्सरी।
1: Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today.

0: हमारे लेस्टर वाले लिसनर ललित भाई और उनके सब दोस्त जो लेस्टर में ट्यून करके सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आपकी नज़र और फरीदा गुलाम अली जी, आपकी नज़र नीला चौधरी जी, आपकी नज़र संध्या भावसर, काशिफ, सलमा, सहर, जैस्मिन, पैमी सिंह जी, विजय गडोरी, आप सबकी नज़र और दिनेश पोपट जी ऑफ कोर्स, हैना, जगदीश ऑफ बुशी, महेंद्र पटेल, अर्जुन जी, नाजिया शकील, आप सबका नमस्कार। एंड हितेश
1: जैमिन गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्मबर्ट जैमिन फूड्स, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात। अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
5: Four beers, please, garçon!
4: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन.
6: लोकेशन लोकेशन लोकेशन. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danio, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Mukesh aur Lata Mangeshkar ke एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
9: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
8: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो. 30th अगस्त वुडमैनस्टर्न स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री. परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
10: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
12: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
12: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
14: sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of August and get up to 400 off. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
2: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.
15: Film Aakhri Khat, लता मंगेशकर.

फिल्म आखिरी खत में म्यूजिक खयाम साहब का। फिल्म शगुन में 1964 की फिल्म में जगजीत कौर जी ने ये गीत गाया, हमेशा का एवरग्रीन, साहिल लुधियानवी जी की लिरिक्स।

0: वाह, ये गीत सब सुनकर ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि साथ में गाने की कोशिश भी मैं करता हूँ, क्योंकि बड़ी देर बाद कई गाने सुना देते हैं। जैसे कि हमारे प्यारे लिसनर सुषमा जी ने कहा कि मैंने ये गीत कितने साल के बाद, शी सेड शी हर्ड इट मे बी आफ्टर 45 years, द सॉन्ग विच वॉज हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां हमारा, एंड इट्स सो नाइस दैट आई कुड चूज सॉन्ग्स विद अ डिफरेंस। नॉर्मली खयाम जी का नाम आता है तो पीपल थिंक अभी कभी कभी सुनाई देगा, और त्रिशूल का गाना गप्पू जी गम गम सुनाई देगा, लेकिन आई ट्राई टू डू इट विद अ डिफरेंस, एंड इट्स गुड टू गेट फीडबैक फ्रॉम यू। तो जितने साइलेंट लिसनर्स हैं वो भी अगर हमें बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 07424 2323 2323 07424 2323 पे हमें बताइएगा कि आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। एंड पहला गाना जो आपने सुना बेमुरव्वत बेवफा, मुबारक बेगम जी ने जो गाया फिल्म सुशीला में, दैट वाज रिटन बाय द ग्रेट राइटर एंड पोएट ए जान निसार अख्तर एंड द म्यूजिक ऑफ सी अर्जुन एंड बेचैन नज़र बेताब जिगर। हमारी लाइब्रेरी में तो कोई अलग ही राइटर का नाम लिखा था जे नक्शब, लेकिन मुझे मालूम है कि ये जान इसार अख्तर जी ने ही लिखा है। फिल्म है यास्मीन 1955 का गाना, और तलत महमूद जी के फैंस स्पेशली हैना वुड बी वेरी हैप्पी टुडे। एनीवे आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट जान इसार अख्तर। इनके दो बेटे ऑफ कोर्स जावेद अख्तर सलमान अख्तर, एंड तारजुब की बात है ना, जैसे हमारे एक लिसनर ने अभी लिखा, क्या लिखा था, तारजुब है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, या मधु जी ने लिखा कि इट्स अ कोइंसिडेंस दैट दे बोथ वर बोर्न एंड दे बोथ पास्ड अवे सेम डेट। जी हाँ, क्या था, खयाम जी और जान इसार अख्तर जी ने काम किया था साथ में 70s और 80s में। कौन सी फिल्में थी, रजिया सुल्तान, नूरी फिल्म, प्यासे दिल, फिर एक थी हर एक हुस्न तेरा आईना लगे, एक टाइटल सॉन्ग था ऑफ अ मूवी विच वॉज संग बाय मुकेश जी। And all these films, in all these films, खयाम साहब और जान इसार अख्तर जी ने साथ में काम किया था। अब दोनों का इत्तफाकन जो बर्थ डेट है और डेथ डेट है, दैट कोइंसाइड्स, साल अलग है, लेकिन आप सोचें कि खयाम साहब वॉज बॉर्न ऑन 18th of February एंड सो वॉज जान इसार अख्तर। खयाम साहब ही पास्ड अवे ऑन 19th of August and so did जान इसार अख्तर 19th of August। इनके साल अलग है, obviously date of birth में the date of being born and date of death, the years are different, लेकिन the dates do coincide। अब जान इसार अख्तर was born on 18th February 1914 in Gwalior and he passed away in Bombay, which is now Mumbai, on 19th August 1976 at the age of 62। इन्होंने चार डेकेड्स में, तकरीबन 40 साल में इन्होंने अबाउट 151 गाने लिखे थे। नाउ ही प्रोड्यूस्ड एंड रोट वन फिल्म, अब वो थी फिल्म बहू बेगम, उन्होंने प्रोड्यूस भी की और लिखी भी कहानी उस फिल्म की, तो मैं आपको एक गाना ज़रूर सुनाऊंगा उस फिल्म का। अब ए आर करदार की यास्मीन फिल्म जिसमें आपने ये गाना सुना बेचैन नज़र, that was kind of a breakthrough song for him, and Guru Dutt ki CID film 1956 ki aankhon hi aankhon mein ishara ho gaya, ha ye gana unhone hi likha tha। fir maine hamare artist of the week is Sahil Ludhianvi ji, to Prem Parbat mein inhone ek gana likha tha, lekin hamare jo artist of the week hai Sahil Ludhianvi ji, इन्होंने कौन सा गाना लिखा था वो मैं आपको नेक्स्ट आवर में सुनाऊंगा। And that is a special choice made by our wonderful listener from Cambridge. And Paji, that will be in your name that I will Gursaranjeet. Gursaranjeet ji, aapki naam main wo gana artist of the week ka aaj pesh karunga. Anyway, aage jaate hue Noori film mein inko award mila tha, lekin wo zinda nahi the tab. 1976 mein he passed away and 1980 mein posthumous award for Noori. Aajare wo gana jo hai famous. And last film Kamal Amrohi ki Razia Sultan. Last film bolun to it took 7 years for that film to release. Aur inhone gana likha tha Ae Dile Nada. And that was his last film for Razia Sultan. That was Kamal Amrohi's. And 1949 mein unki umr thi 35 saal ki. अब क्या हुआ 35 साल की उम्र में, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1943 में when he was 29 years young he married Safiya Siraj ul Haq and 3 years after Safiya's death in on 17 January 1958 it was, that's right, 1958 में इनका इंतकाल हुआ था Safiya जी का. And 3 years after that, he remarried. He married again on 17 September 1956 to the sister of poet Majaz Lakhnavi. And unka naam tha Khadija Talat. Khadija se shaadi hui. Ab jab Javed, who was born in 1945, Salman 1946, they were born to the first wife, of course, Safiya Siraj ul Haq. And after independence, there were riots in Gwalior. So he was forced, that forced Jaan Nisar Akhtar to shift to Bhopal. And then he joined Hamidia College as head of Urdu department, Urdu and Persian department. Fir first wife Safiya also joined the college, Undoran, after independence. Jab wo chale gaye Bhopal and the Hamidia College. And then he became its president. They became part of the Progressive Writers Movement. And he became the president of the Progressive Writers Movement, PWM. Ab 1949 ki baat jo maine ki thi, jab 35 saal ki umr thi, he resigned and he moved to Bombay to write lyrics for movies and nazms for general publication. And success came quite late for this film lyricist. During which he was supported by his first wife, who stayed back in Bhopal. वो बॉम्बे चले गए और भोपाल में बच्चों के साथ वो रहती थी, बच्चों का देखभाल भी वही करती थी. And that was Javed and Salman, who hardly saw their parents at that particular time. And film Yasmin, जैसे मैंने कहा, at the age of 41 in 1955, C. Ramchandra का music था, तब इनको थोड़ी ब्रेक मिली. फिर मदन मोहन जी के साथ इन्होंने नया अंदाज फिल्म में गाना लिखा, छू मंतर में. ऐसे कई गाने इन्होंने लिखना शुरू कर दिए. अब मैं आपको सुनाऊंगा उनके गाने, उनके लिखे हुए गीत, जान निसार अख्तर फॉर दिस आवर. मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन. जैमिन के बगैर मेरा वीकेंड नहीं चलता. जब म्यूजिक रिहर्सल भी होता है वहाँ पे, म्यूजिशियंस आर सो हैप्पी बिकॉज म्यूजिक तो बजाएंगे ही, लेकिन उनको खाना मिलता है जैमिन का.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you could fetch up to 129.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana, original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: Anup Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota. On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
5: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
6: कृष्णन जन्मनो आनंद उत्सव एक रात एक अनुभव
5: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
6: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीसीसी अप्लाई।
12: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
13: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
14: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
13: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
15: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
16: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
17: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: रिकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
1: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
2: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
3: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन, ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: such soothing moments listening to that particular song. I felt it. I know you felt it. Thank you for your wonderful messages as well. I hope you enjoyed the tributes of Khayyam Saab and Jaan Nisar Akhtar today. And next hour, we have our artist of the week, Sahid Ludhianvi. Bada acha gana maine chuna hua hai. Next gana, CID. Aur uske baad, Baap Re Baap. In dono gaane ke lyrics, Jaan Nisar Akhtar.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
0: ओपी नैयर का संगीत एंड शमशाद बेगम जी गा रही हैं. फिल्म है सी आई डी 1956 और लिरिक्स जान इसार अख्तर. और नेक्स्ट गाना भी ओपी नैयर का संगीत है और जान इसार अख्तर जी की लिरिक्स है. फिल्म है बाप रे बाप, उसमें आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी ने गाया था. घोड़ा गाड़ी वाला गाना. Enjoy.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: कॉन्सलो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी
3: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
4: पल भर के लिए
5: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज। इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा। गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25। बुक टिकट्स एट herorartcenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02023737161।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक रेडियो नेटवर्क।
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
10: लाइक अ गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
11: Artist of the week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की लिरिक्स फिल्म दुनिया 1968 की अभी भी सुपर डुपर हिट है, किशोर कुमार और आशा भोसले। आगे मैं दो गाने आपको सुनाता हूँ। देवर प्लेड ऑन लाइका गोल्ड 4 years ago 2022 में ये गाने सुनाई दिए थे। बोथ द सॉन्ग्स हैव गॉट जान निसार अख्तर। जान निसार अख्तर ने ये दोनों गाने जो मैं अभी सुनाने वाला हूँ लिखे थे। दाल कैसे गले किशोर कुमार ने गाया था बाप रे बाप का। एंड देन छू मंत्र फिल्म का 1956 का, इट्स आशा भोसले एंड मोहम्मद रफ़ी।
1: फूट आपस में पड़ी और हम कुंवारे रह गए, सब बराती चल दिए दूल्हा बेचारे रह गए।
2: धिंग फटाफट

तुम्हारे भले। भींगा मुश्ती हुई, खूब झगड़े हुए, आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए। धूम धड़क का चील झपट्टा, बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक झाम चिक चिक बम बम झाम चिक चिक बम चिक चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम। ऐसे घूंसे लगे, ऐसे डंडे पड़े, सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े। ऐसे घूंसे लगे, ऐसे डंडे पड़े, ऐसे घूंसे लगे, ऐसे डंडे।

0: चलो बाहर भी
1: चार साल पहले हमने सुनाए थे ये गाने लाइका गोल्ड पे 2022 में। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कौन आ गया? अरे इट्स सैंडी शाह फॉर ड्राइव टाइम एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स इज गोना बी राजपत्तन। मैं चला दूसरा गाना जो है वो भी सुनिएगा।
2: The perfect soundtrack for a British summer heatwave.
1: आशा भोसले जी और रफी साहब ने गाया फिल्म छू मंतर का। इट्स अनदर घोड़ा गाड़ी सॉन्ग, यू नो 1956 वाला। मजा आएगा। ओपी नैयर का संगीत। बाय बाय।
3: नुमानी मेरी बातें हैं निभाती देखो दुनिया करे मुझसे प्यार।
1: सॉरी घोड़ा गाड़ी वाला दूसरा एक गाना था।
3: ए जी छोड़ो ये

0: To book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल.
5: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीएनसी सप्लाई.
6: साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
7: बीकानेर वाला परंपरा भी.
8: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 07795181001.
9: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
10: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
11: This is Sandy Shah on Gold Drive.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे
3: तमे बधा पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो
4: ए तमे स्त्री ओमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगवानू बंद करो
2: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जान मा हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153427 नाटक नु नाम याद राखजो
5: Kato Couture's biggest end of season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewelry from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kato's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kato's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kato's Couture.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: now visit starters.co.uk or call
1: 208-900-2323.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
4: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
4: high appreciation.
5: In Dubai.
6: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota.
7: Jaam chalne lage, dil machalne lage.
6: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
9: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह।

0: अंडर 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: वन परफॉर्मर काउंटलेस पर्सनालिटीज whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover live UK tour 2026.
2: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 लाइन.
5: इमेजिन टर्निंग योर नेक्स्ट केक box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
0: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322774. बुक योर टेबल टुडे.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: पल भर के लिए
2: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25 बुक टिकट्स एट herorartcenter.com बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Radio Network.
3: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीसीएस अप्लाई
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
4: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
6: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocenter.org Assuming you want to get noticed.
7: The Evening Show with Ashwini.
8: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे
9: ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। आज आप और हम मना रहे हैं साथ में मेरा फेवरेट डे। एंड देखो ना, मैं कितनी लकी हूँ कि आप सब मेरे इस खुशी भरे दिन में आप सब भी खुशी मनाते हैं। मेरे इस खुशी भरे दिन में वेंसडे इज माई फेवरेट डे। सो सारे के सारे लिसनर्स मुझे बिल्कुल ही मैसेज कर रहे हैं, आप प्यारा प्यारा हमारा म्यूजिकल परिवार आ गया तुम्हारा फेवरेट दिन। तो आप अभी वो भी डायलॉग मरोगे क्या कि खुश तो बहुत होंगी तुम अश्विनी आज, है दो दिन इधर दो दिन उधर, फुल ऑन नौटंकी ना। ओके, सो दो दिन इधर दो दिन उधर वाला आज का हमारा फेवरेट डे। सो गानों की लिस्ट जैसे हमारे गुरुजी कह के गए हैं कि मस्ती मज़ा तो होने वाला है, लेकिन यहाँ पे गाने की लिस्ट ऐसे ही होने वाला है। सो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे धुरंधर अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। आज लाइफ थियरी सुनाएगी अश्विनी, बिल्कुल सुनाएगी। और कोई सवाल लाई है या छोटा सा सवाल है बचपन में लेके चलती हूँ, कल आप लोगों को मैं स्कूल में लेके गई थी, आज बचपन में चलेंगे। अच्छा, बचपन में कोई एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लग जाती है, पहली ऐसी चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ है ना। अब ऐसे तो कोई बोल ही नहीं सकता कि नहीं मैं तो इस संसार की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर हूँ, नहीं नहीं नहीं मैं बचपन में लेके जा रही हूँ, तो वो वाला प्यार हमारे पास रहता है। सो एट द एज ऑफ 7 or 8 आई लर्न टू ड्राइव अ बाइसिकल। ओके, बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट, बहुत छोटी सी वो बाइसिकल थी, एंड आई रिमेम्बर इट वॉज 50 paisa per hour। ओके, दैट टाइम। सो मुझे वो साइकिल इतनी प्यारी लगी, इतनी क्यूट लगी कि मैं अपने पापा के पीछे थी कि मुझे ऐसे ही साइकिल लेके दो। सो पहला मेरा मटेरियलिस्टिक प्यार था दैट छोटी सी क्यूट सी बाइसिकल। सो बचपन में कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपके जहन में थी कि अरे यार बस ये मिल जाए, ये मेरा आज का सवाल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 129 इंडियन रुपीस एंड 60 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai Laika Gold.
3: चलिए मिलाने की घड़ियां एक बार देखते हैं, टाइम कितना हुआ है, 7:28. इट्स 7:28. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. एंड हर रोज ही मैं आप सबको कोई ना कोई लाइफ थ्योरी सिखाती हूँ, सिखाती नहीं हूँ, बताती हूँ. सीखते तो हम सभी हैं, एक दूसरे

0: कॉफी समझना है, कॉफी समझ लीजिए। खैर, मेरी इस थ्योरी का नाम है द वार्म कॉफी थ्योरी। तो ये किसी जेंडर के लिए नहीं है स्पेसिफिकली, ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों से बेहद प्यार करते हैं। तो ये प्यारे लोग वो प्यारे लोग होते हैं कि अगर अपना कॉफ़ी का कप लेके बैठे हैं एंड उसी समय किसी का फ़ोन कॉल आया जिनको उनकी ज़रूरत है इमोशनली, घर में किसी ने आवाज़ लगा के कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फटाक से अपनी कॉफ़ी रख दी साइड में, उन्हें हेल्प करा दिया, और भी जहाँ जहाँ अवेलेबल होके मदद कर सकते हैं, ये उन्हीं की थ्योरी है। सो क्या हो जाता ना कि ये जो प्यारे लोग होते ना, जो हमेशा दूसरों के लिए तैयार होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उन्हें मदद करते रहते हैं, तो इन्होंने खुद के लिए बड़े चाव से जो कॉफ़ी बनाई होती है वो कॉफ़ी ये रख देते हैं साइड में एंड जाके पहले दूसरों के काम निपटाते हैं, उन्हें मदद करते हैं। अब जब तक ये वापस आते हैं तब तक वो कॉफ़ी वार्म हो गई होती है, ठंडी हो गई होती है। अब जितने पैशन से इन्होंने कॉफ़ी बनाई थी, अब वो पीने में मज़ा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है बाद में फिर से गर्म करके ले लेंगे, बट फिर से कुछ आएगा। ओके, तो ये थियरी हमारे ज़िंदगी में कहाँ काम आती है, बस वही काम आती है, छोटी सी थियरी है उन सारे लोगों के लिए जो हमेशा सबकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अपना करियर, अपना घर, अपना संसार, अपने बच्चे, अपने पार्टनर्स, अपने बेटर हाफ, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी सोसाइटी, उन सब के लिए रहते हैं ये तत्पर मदद करने के लिए। पर क्या ये खुद के लिए अवेलेबल है, क्या ये खुद को मदद करते हैं, आर दे काइंड टू देमसेल्व्स? अगर वो सभी लोग जो समझ गए हैं कि मेरा इशारा उनके तरफ है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने आप की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। वो जो समय आप दूसरों पे दे रहे हैं अच्छी बात है, पर कभी कभी वो समय अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना समय आप उस करियर के पीछे, उस ऑफिस के पीछे लगा रहे हैं ना, आपकी तबीयत, आपकी रिलेशनशिप्स वहाँ पे शायद रुइन हो रहे हैं, और आपकी रिप्लेसमेंट तो ऑफिस में मिल ही जाएगी, लेकिन आपके परिवार, फ्रेंड्स, आपके नातों में वो जगह नहीं मिलेगी जिनके साथ आप रहना पसंद करते हैं, या उन रिलेशंस में इतना भी ना डूब जाए कि जहाँ आपकी प्रोग्रेस के लिए आपको जो चीज़ें करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। खुद के लिए जीना, सेल्फिश होना और खुद की प्रोग्रेस के लिए काम करना, ग्रो करना, ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। आई एम श्योर आप सब बहुत समझदार हैं, मेरा इशारा क्या है आप समझ चुके हैं। अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने आप के लिए जिए। कभी तो ना रैंडमली बैग उठा के ना कहीं निकल जाइए घूमने फिरने के लिए, ज़रूरी होता है खुद के लिए वो स्पेस एंड हमारे आसपास वालों के लिए भी। क्या आपने अपने साथ कभी वक्त बिताया, अपने को प्यार किया, अपने को ये जताया कि भाई मैं कितनी ज़रूरी हूँ, या भाई बहन, जो भी भाई जेंडर, मैंने पहले ही कहा कि ये जेंडर बायस नहीं है, खुद के लिए बस कभी वो समय निकालिए। हाँ, मुझे मत जवाब दीजिए कि ये समय आपने अपने आप के लिए निकाला या नहीं। खुद को ही सवाल पूछो और खुद को ही आंसर दो। कैसी लगी थ्योरी जरूर बताइएगा।
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation.
2: In Dubai.
3: 0730998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप

0: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
1: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
0: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th August हेज एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
2: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
3: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
4: परंपरा भी
0: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 King Street साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइका गोल्ड.

0: Ashwini, brightening up your weeknights.
1: ये है लाइका गोल्ड.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 130.08 इंडियन रुपी, 377.64 पाकिस्तानी रुपी, 450.36 श्रीलंकन रुपी, 166.25 बांग्लादेशी टाका, 88.92 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर, 176.16 केनियन शिलिंग, 63.91 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £106.08 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 8:49 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मुझे मेरी स्क्रीन पे 1919 दिख रहा है. ऑल दोस पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट एंजेलिक वर्ड्स आर, एंजेल नंबर्स. आप तक मैसेज पहुंच गया होगा. जी 1919. जी हाँ, ये नंबर्स जैसे जो एक जैसे नंबर्स आपको दिखते हैं ना, तो कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी एक अलग पाथ पे जा रही है. सो अगर आप लोगों को भी ये जो है एंजल नंबर्स दिखते हैं तो बधाई हो. एनीवेज, इस आवर का आखिरी गीत आप सबको मैं सुनाने वाली हूँ शब्बीर कुमार की आवाज़ में एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में. दिस इज़ फ्रॉम वो सात दिन. मैंने आप सबसे पूछा है कि बचपन की कौन सी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसपे आपका दिल जिगर आ गया था. सब अपनी अपनी यादें बता रहे हैं. एक बड़ी क्यूट चीज़ मुझे लगी, समबडी सेड कि उन्हें ट्राइसिकल बड़ी अच्छी लगी थी, तो दैट्स वेरी क्यूट. चलिए अब आखिरी गीत इस आवर का.
0: This is Ashwini on Leica Gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simsy before we left London.
8: Simsy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
10: T's and C's. Apply.
11: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે.
12: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને લગ્ને કુવારા હો છો.
13: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો.
11: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈ ની જાનમાં. હવે રાઇસલી, પોટર્સ બાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં. ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
14: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02208767627.
15: हरे कृष्णा.
16: सेलिब्रेट कृष्णा जन्माष्टमी इन अ ट्रूली वाइब्रेंट वे. जॉइन अस ऑन संडे द 30th ऑफ ऑगस्ट फ्रॉम 2 PM टू 8 PM एट नवनाथ सेंटर प्रिंटिंग हाउस लेन हेज UB3 1AR. लाइव म्यूजिक और Ramayan play, Rasleela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
17: Watford में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
18: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
17: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
18: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
19: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio, Greater London.
20: The Evening Show with Ashwini.
21: Feel good classics all day. Leica Gold.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। इस आवर का आगाज हमने किया दो बड़े ही बेहतरीन गीतों के साथ में। विरासत फिल्म से लिया था ढोल बजने लगा ने, उसके बाद सिलसिला फिल्म से देखा एक ख्वाब, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सबको सुनाया। घर घर की कहानी में एक सवाल पूछने वाली हूँ बस थोड़ी ही देर में, और आप लोगों के जो फीडबैक आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल आप हमें मैसेजेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप हमारा शो सुन रहे हैं। सो मेरे साइलेंट लिसनर्स, प्यारे प्यारे लिसनर्स, बिल्कुल मुस्कुराइए नहीं, हाँ जी सर आप, हाँ जी दीदी आप, बिल्कुल हेलो अश्विनी, हमने आपका शो ट्यून इन किया है। अरे बड़ा अच्छा लगता है भाई हमें भी आपका जब ये मैसेज आता है। तो घर घर की कहानी में कौन सा सवाल है बस पूछते हैं कुछ ही देर में। एंड कुछ ऑड जॉब्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं कि ऐसे जॉब्स भी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
1: This is Leica. Hey Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 इंडियन रुपी एंड 60 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई ऑनलाइन, ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
3: हाँ जी आऊंगी जरूर आऊंगी। मोहम्मद रफी की आवाज़ में राजा और रंग से सुनाया और फिर की वाली तो कल फिर आना। तो हमारे प्यारे लिसनर्स कह रहे हैं ये गाना आपके लिए डेडिकेट कर लो भाई। कितने सारे लोगों ने कहा है, सच में आप लोगों में से कई जो लिसनर्स ना काफ़ी लिसनर्स का लिखने का पैटर्न काफ़ी सिमिलर होता है, तो ऐसा लगता है कि ये दो तीन लिसनर्स अगर साथ में बिठा दें तो मतलब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी सेम होगा, उनका सोचने का तरीका भी सेम होगा। बिल्कुल कल मैं आऊँगी, लेकिन परसों मैं नहीं आऊँगी, परसों होगी मेरी छुट्टी एंड फिर नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ, है ना। सो कल थ्रिलिंग थर्सडे मनाएंगे साथ में। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इमोशन ऑफ द डे में फील गुड वेंसडे, माई फेवरेट डे। तो मेरे फेवरेट डे में मेरा नेक्स्ट जो गाना है दैट इज़ माई फेवरेट, पर उसके पहले घर घर की कहानी में आप लोगों का अनुभव होगा, सभी का अनुभव होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बैक इन एशियन कंट्रीज, वो हमारे बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो या कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कॉल अगेन दे आस्क द सेम क्वेश्चंस, एंड फिर आपके बच्चे आपको देते हैं वो लुक, एंड फिर आपके माता पिता वहाँ से पूछते हैं कि क्या हो गया, मैंने क्या गलत सवाल पूछ दिया। वीडियो कॉल पे जब दिख जाती हैं वो आंखें यहाँ से वहाँ रोल होते हुए। तो क्या आपके साथ में ऐसे होता है कि आपके पेरेंट्स या आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में से कोई आपके बच्चों को पूछते हैं अच्छा बेटा कौन सी क्लास में हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, एंड नेक्स्ट टाइम द सेम सवाल। सो ऐसे एक्सपीरियंस हैं आपके, ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि घर घर की कहानी में काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं। ओके फील गुड वेंसडे में, दिस इज़ सच

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:36, इट्स 8:36 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। फील गुड वेंसडे मना रहे हैं आप और हम, दो दिन इधर एंड दो दिन उधर, बस फिर वीकेंड करीब एंड वीकेंड पे तो आराम से चिलैक्स रिलैक्स आप और हम सभी ना अपने अपने काम पे लग जाते हैं, मतलब रिलैक्स होने वाला काम। कैसा लगा ये गीत, मज़ा आया ना लता मंगेशकर की आवाज़ में, जमी आसमान। एक अजीब सी खुशी है इस गीत में ना, ऐसे इसमें उत्साह भी है, रोमांस भी है, प्यार भी है, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी लगती है मुझे इस गीत में, पता नहीं क्यों। ओके, एंड आप लोगों से सवाल पूछा है मैंने कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं बैक इन अपने एशियन कंट्रीज, वो हमारे बच्चों से पूछते हैं भाई कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, एंड यस ये भी ज़रूर होता है कि अच्छा कितना कमा लेते हो, तो अच्छा यहाँ की करेंसी में मतलब कितना कमा लेते हो, अच्छा तुम्हारे फ्रेंड्स भी कमाते हैं तो वो तुमसे ज़्यादा कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं आई थिंक इट कम्स वेरी नेचुरली। ऐसे कुछ कंपैरिजन कई लोग शायद करते होंगे, कई लोग ऐसे उत्सुकता में पूछते रहते हैं। बिल्कुल बताइए कि आपके पेरेंट्स आपके बच्चों के साथ में कौन से विषयों पर बात करती हैं और उसमें फिर आपका सैंडविच बनता है क्या, बताइएगा। ओके, सो कुछ ऑड जॉब्स, स्ट्रेंज जॉब्स होते हैं, नॉट ऑड जॉब्स, स्ट्रेंज जॉब्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। सो प्रोफेशनल स्लीपर मतलब इसमें इस इंसान को कितने घंटे इंसान सो सकता है, ये साइंटिस्ट देखना चाहते हैं, इसलिए प्रोफेशनल स्लीपर का भी एक जॉब होता है। फॉर्च्यून कुकी राइटर्स, दे राइट मैसेजेस फाउंड इनसाइड फॉर्च्यून कुकीज, जिन्होंने फॉर्च्यून कुकीज में से मैसेज निकाल के मुस्कुराए होंगे, आप समझिए ये कौन कर रहा है आपके लिए। पैंडा नैनी, या केयर्स फॉर एंड लुक्स आफ्टर बेबी पैंडाज एट स्पेशलाइज्ड कंजर्वेशन सेंटर्स, आई वांट टू डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब। मतलब मेरे सोशल मीडिया की आधे से ज़्यादा पेजेस जो है ना पैंडाज की होती हैं, दे आर सो क्यूट, मतलब सच में बता रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि आपका दिन खराब जा रहा है, आई एम सैड लग रहा है, प्लीज़ ये पैंडास की रील्स देखिए, एक तो एनिमल्स की रील्स देख लो ना, ऐसे ही मुस्कुराने लगोगे आप लोग। फिर गोल्फ बॉल डाइवर्स, दे डाइव इनटू गोल्फ कोर्स लेक्स एंड रिकवर थाउजेंड्स ऑफ लॉस्ट गोल्फ बॉल्स, तो जिनको स्विमिंग बड़ी अच्छे से आती हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं और गोल्फ बॉल्स भी इकट्ठा करना चाहते हैं, ज़रूर अपने आस पास कहीं ऐसे जॉब्स हो तो अप्लाई कीजिएगा। पेट फूड टेस्टर, जिनके घर में पेट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि पेट्स के लिए विशेष तरीके से बीस्पोक डिज़ाइन किए हुए फूड होते हैं, सो दे दीज पीपल दे टेस्ट पेट फूड फॉर एंड दे चेक इट्स क्वालिटी, फ्लेवर एंड कंसिस्टेंसी। लेगो मास्टर बिल्डर, बच्चों के लिए लेगो जो लाते हैं उसके पहले बड़े इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं, खेलते हैं। प्रोफेशनल मोर्नर्स, प्रोफेशनल मोर्नर्स आर रुदाली, ओ या वैसे ही, यस। एंड वेनम कलेक्टर, अभी ये दे कलेक्ट स्कॉर्पियन वेनम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बापरे बापरे बापरे, इसी में वो सांप से भी जो वेनम कलेक्ट करते हैं पॉइजन, वो वाला भी कुछ जॉब है। बस ये सारे हटके जॉब थे, इसके बारे में पता नहीं था कि अच्छा मतलब कोई आलसी इंसान हो और वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि कितने घंटे सो सकते हैं इंसान, बढ़िया होगा भी उन लोगों के लिए।
0: लाइका गोल्ड।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल, एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: एपिसोड नंबर 29, इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, होस्टेड बाय रवि शर्मा। गोल्ड प्राइसेस आर सोरिंग बट हु इज रियली कंट्रोलिंग द गेम, डू द न्यू जनरेशन ऑफ साउथ एशियंस स्टिल कंसिडर गोल्ड एज अ वैल्यूएबल एसेट। Like Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Like Extra is here. This is Ash Winnie on Like a Gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड,
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas. He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares, and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
9: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
10: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to Minar Jewelers about whether gold is really the best investment.
11: Gold is something which you have in your pocket. It keeps on going up in value. And if you look historically, and on the last 26 years, the price of gold has gone up by 1,895%. No other single item, including property, has gone up as much as gold.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your week.

0: This is Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130.07 इंडियन रुपी, 377.64 पाकिस्तानी रुपी, 450.34 श्रीलंकन रुपी, 166.27 बांग्लादेशी टाका, 89.04 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.19 केनियन शिलिंग, 63.89 मॉरिशियन रुपी.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £106.08 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. बहुत सारे लोगों ने उनके पेरेंट्स के और उनके बच्चों के कैसे संभाषण होते हैं, कैसी बातें होती हैं, हमारे साथ में शेयर किया है. तभी तो लेके आए हैं घर घर की कहानी. बड़े फनी फनी आंसर्स होते हैं सभी के. एंड उनका जो रिलेशनशिप होता है ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रैंड किड्स का, वो बड़ा अच्छा होता है ना. आई स्टिल रिमेंबर समबडी इन माई फैमिली सेड, ओ माई मदर सेड, मेरी आई ने मुझसे एक बार कहा था कि बेटा दूध से ज़्यादा जो मलाई होती ना वो ज़्यादा प्रिय होती है, स्पेशली फॉर ग्रैंड पेरेंट्स की. अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे और ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा दुलारे उनके ग्रैंड किड्स होते हैं. आई थिंक दिस इज ओवर द जनरेशन इट हैपेंस, राइट. चलिए इस आवर का आखिरी गीत आप सबको मैं सुना रही हूँ, बहारों के सपने. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक, ट्रस्ट मी यू विल लव इट. दिस इज द लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर. चलेंगे आगे.
0: Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa. This is Ash Winnie on Leica Gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस विद द लेजेंडरी अनुप चलोटा.
5: जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे.
4: ऑन संडे 30th ऑगस्ट एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ड. डोर्स ओपन 5 PM, शो स्टार्ट्स 6 PM. होस्टेड बाय अनीसा नासिर. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से. बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk. रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साफो ट्रेवल. Atoll protected.
7: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box, and you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
10: वेडिंग सेलिब्रेशन कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
11: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com।
12: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
13: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
14: London's biggest classics all day. This is Laika Gold.

0: Swinney, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 इंडियन रुपी एंड 60 पैसे एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ayaya, suku, suku! Ayaya!

0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: भाई तीनों ही गीत जो थे इस आवर के थे बड़े जबरदस्त, मजा आ गया ना. सो वेलकम टू द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. पहला गीत आपको यस बॉस से हमने सुनाया, उसके बाद में आशा भोसले एंड विनोद राठौड़ की आवाज में आहा, चांदनी से पर्वत से काली, एंड उसके बाद अभी मस्ती भरा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में जंगली फिल्म से. भाई आप लोगों से जब वादा किया है कि आपके लिए ऐसे गीत लाएंगे जहां पे आप सोचे कि अब अश्विनी को कहे हैं गुड नाइट और निकल ले यहाँ से, तो आहा हो ही नहीं सकता. अगले भी जो गीत लाइंड अप हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग गीत हैं. सो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है साहिर लुधियानवी, उन्हीं का लिखा हुआ गीत त्रिशूल फिल्म से आपको सुनाने जा रही हूँ. वॉल्यूम अप तो मत रखिए क्योंकि रात हो गई ना. एंड यस, टुमारो इट्स द GCSE रिजल्ट, हाउ एक्साइटेड एंड नर्वस आर यू ऑल. भाई मैं भी आप लोगों के साथ में उसी नैया में बैठी हूँ, हाँ, क्योंकि देखते हैं कल रिजल्ट आएगा तो क्या होने वाला है. सो ऑल द बेस्ट टू पेरेंट्स एंड द किड्स. सब होगा अच्छा ही होगा, है ना, वही होगा, बच्चों ने मेहनत की तो अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे, आई एम श्योर. सो नेक्स्ट ट्रैक जाने मन तुम कमाल करती हो.
2: माय बीन्स हैव बीन टू मेक्सिको, दे वंस वेंट टू पेरू, माय बीन्स दे फ्लू टू पोर्चुगल, देन वेंट टू टूवालू, माय बीन्स वर विद मी इन इटली, देन केम विद मी टू ग्रीस. I slurped their sauce on Spanish shores. I nibbled them in Nice. My hind beans have seen the world. They've traveled far and wide because they are, as we all know, too good to leave behind.
3: Okay, let me stop you there, sir. You still have to check them into the hold.
2: Oh, all right then. Honestly.
4: Beans means hinds.
0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
6: Two businesses.
7: Same town.
6: Same service.
7: One appears on page one of Google.
6: The other doesn't.
7: Guess which one gets the customer?
6: The truth is brutal.
7: The first page of Google gets the business.
6: Everyone else gets what's left.
7: So here's the real question.
6: When your customers search for what you sell, do they find you?
7: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज.
9: इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहद यफ, अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा.
1: गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 25 pounds. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203773 7161.
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network.

0: much more. Visit happyhalwai.com.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:31। लता मंगेशकर की ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस में अभिलाषा फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी से। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
4: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
6: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
7: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: One performer,
8: countless personalities,
6: a whole universe of entertainment.
8: Sunil Grover, live UK tour 2026.
6: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
8: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
6: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
6: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com।
10: Disney supply. You know how fans shout at football matches?
11: Oh, wake up!
10: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130.04 इंडियन रुपी, 377.6 पाकिस्तानी रुपी, 450.27 श्रीलंकन रुपी, 166.24 बांग्लादेशी टाका, 89.06 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.15 कैनियन शिलिंग, 63.89 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £106.91 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:41. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. कल हम मिलेंगे और मनाएंगे साथ में थ्रिलिंग थर्सडे. गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विसेज जरूर सुनिएगा, लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. और हमेशा की तरह यही कहेंगे भाई, प्यार बेहद खूबसूरत है तो प्यार दो, प्यार लो, एंड जिंदगी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है तो प्लीज़ उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. आपके मन और दिमाग में जो चीज़ें बोल के दिखाएं, कम्युनिकेशन हेल्प्स. ओके, एंड भाई प्यार की बात हुई, लाइफ की बात हुई, पावर की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता. तो पावर लोग जनरली किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए यूज़ करते हैं. आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता होगा, क्योंकि आप हैं म्यूज़िकल फैमिली वाले. सो आप अपनी लाइफ को इन्जॉय करते होंगे और करने देते होंगे. सो अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा. गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, तो मैं सुनाने वाली हूँ कव्वाली फ्रॉम मुकद्दर का सिकंदर. और उसके पहले भी आपको मैं कुछ सुनाने वाली हूँ, दैट इज़ प्यार जिंदगी है. ऑन दैट नोट्स आई विल से बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू टुमारो.
2: ये है लाइका गोल्ड. This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
3: Hey man, you dig this sort of music, eh? You like it? Then why don't you come and join and love it?

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
4: Banana na function rakha hua hai.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
5: डेजर्ट सफारी,
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: डैड,
10: व्हाट्स रॉन्ग बेटा?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, balle balle. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
13: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
12: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
13: And you didn't pay those massive roaming charges?
12: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
14: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: Like a gold par har raat ki yahi reel. पुराने मगर सदा बहार गीत।

0: क्लॉस अब है स्टॉप क्लॉस।
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: कब नाउ सरप्लस अब है स्टॉप लॉस।
1: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
4: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।